अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चंद्र जी की जय, श्री अयोध्या राम जी लला जी की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री उमापति महादेव जी की जय।

श्री गोविंद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण प्राकृत गुणों पर आधारित 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन करते हैं।

श्री भगवान आहार तप यज्ञ एवं दान आदि का सतो रजो एवं तमोगुण के आधार पर विश्लेषण करते हैं। वे कहते हैं

श्री गोविंद, ओम, तत्, सत नामक तीन ब्रह्म सूचक शब्दों के महत्व को बतलाते हुए समस्त यज्ञ, तप, दान आदि में इन शब्दों के उच्चारण की अनिवार्यता को स्पष्ट करते हैं।

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

हमारे यहां नदियां हमेशा से पवित्र रूप में देखी जाती रही हैं। वेदों की ऋचाएं तो यहां तक कहती हैं कि जो व्यक्ति गिरि आश्रय या नदी संगम पर ध्यान मनन करता है उसे ही पवित्र बुद्धि प्राप्त होती है। इसी गहरे विश्वास के चलते आर्यों की प्राचीन सभ्यता 7 नदियों के आसपास विकसित हुई और उस प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। धीरे धीरे ये आर्यजन अपनी सभ्यता का विस्तार करते हुए महाकौशल और मालवा के पठारों की गहरी घाटियों में भी उतरते चले गए, जहां उन्होंने

मत्स्य पुराण के अनुसार गंगा कनखल तक, सरस्वती कुरुक्षेत्र तक, किंतु नर्मदा तो अमरकंटक के सघन जंगलों से होकर खंभात की खाड़ी तक एक सी पवित्र है। इतनी पवित्र कि वह अपने दर्शन मात्र से धन्य

0: इसकी उत्पत्ति की पौराणिक कथा भी अत्यंत अर्थगर्भी और प्रासंगिक है। इन्हीं जनश्रुतियों के आधार को मजबूत करते हुए डिंडौरी गांव के श्री अरविंद नारायण पाराशर।
1: जनश्रुतियों के आधार पर अमरकंटक जो नाम अभी हम लोग सुना करते हैं, ये अपभ्रंश होना चाहिए, क्योंकि अमरकंटक का मूल नाम अमरकंठ है और यह

0: शंकर जी के उस नीलकंठ को स्मरण कराता है जिसके जरिए जहर पी करके भी वे अमर हैं। इसीलिए यह भी जाहिर होता है कि अमरकंटक, तथाकथित अमरकंटक शंकर जी की तपस्थली है। और एक बार जब वे अपने तप में इतने अधिक लीन हो गए कि प्रेमाश्रु बहने लगे, तो एक एक अलग अलग प्रेमाश्रु एक एक जलधारा के रूप में बह निकला, एक पूर्व की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर बही जलधारा नर्मदा और पूर्व की ओर बही हुई जलधारा सोन के नाम से प्रसिद्ध।
1: जबलपुर के समीप धुआंधार और भेड़ाघाट के जलप्रपात के दृश्य नर्मदा के यौवन के ही तो प्रमाण है। विश्व प्रसिद्ध धुआंधार यदि नर्मदा का विस्फोटक उल्लास है तो भेड़ाघाट उसके आत्मसंयम की निशानी। नर्मदा को जीवनदायिनी प्रतिपादित करते हुए जबलपुर के अमृत लाल जी बेगर।
2: बरमान घाट का मेला नर्मदा तट पर भरने वाले मेलों में सबसे बड़ा है। होशंगाबाद के घाट हमारे देश के सर्वोत्तम घाटों में से हैं। यहाँ अंधकार में नर्मदा में दीप छोड़ती स्त्रियों का दृश्य हृदय पर अमिट छाप छोड़ जाता है। हमारे देश की इस प्राचीनतम नदी पर कई नवीनतम बांध बन रहे हैं। ये बांध होंगे पानी के रिजर्व बैंक। जब चाहो जितना चाहो पानी ले लो, नर्मदा का भंडार सदा भरा रहेगा। नर्मदा सच्ची अर्थों में माता बनेगी। नर्मदा कभी हमारे देश को दो हिस्सों में बांटती थी, आर्यावर्त और द्रविड़ देश के बीच की विभाजन रेखा थी। बाद में यही नर्मदा उत्तरापथ और दक्षिणापथ की संस्कृतियों की मिलन रेखा बनी और अब यही होगी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा। नर्मदा तो बस नर्मदा है। जैसा भव्य उसका अतीत है वैसा ही उज्ज्वल उसका भविष्य है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी।

नर्मदा की पूर्वी और पश्चिमी घाटी में गौंड, बैगा, कोरकू और भील जैसी अनेक जनजातियां आज भी नर्मदा के सघन विरल वनों और उबड़ खाबड़ घाटियों को अपनी बांसुरी और मांडल से गुंजाती रहती हैं।

नर्मदा के पश्चिम घाट के आदिवासी मुख्यतः भील और भीलाला है, जो झाबुआ, अलीराजपुर और गुजरात के सीमावर्ती जिलों में सूखी जटाओं की तरह नीरस और नंगी पहाड़ियों के बीच कंकरीली पथरीली जमीन में शताब्दियों से जीवन यापन कर रहे हैं।

पूर्वी छोर पर बसे बैगाओं का जीवन अपने आप में मोहक है। प्रशस्त ललाट, बढ़े हुए केश, चेठी पर लटकता हुआ चूड़ा, कमर से लिपटा हुआ कोपिन, कंधों पर रखा हुआ धनुष और कुल्हाड़ी, बांस के टप्परों पर मिट्टी के पलस्तर वाले घर और जंगलों की निर्द्वंद चुप्पी में जब ये अपनी टिंकी और मांडल उठाकर हरेली, दशहरा, नवाखाना या विदुरी का उत्सव मनाते हैं तो उल्लास से थिरक उठते हैं।

0: बैगा जाति का विस्तृत वर्णन करते हुए डॉक्टर नित्य उपाधीक्षित।
1: मंडला जिले की समस्त जातियों के बीच सबसे प्राचीनतम जाति बैगा है और इस जाति का निवास स्थान मेकल शैलमालाएं हैं, जो कि नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र है। मेकल शैल मालाओं में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि घने जंगलों में रहने के कारण ये वहाँ की वनस्पतियों से, जड़ी बूटियों से सुपरिचित हो जाते हैं और असाध्य रोगों में उनका प्रयोग करते हैं। जब कभी ये नीचे आते हैं तो लोग ऐसा कहा करते थे कि बैदगा आ गया। मंडला के पूरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर गा लगाने परंपरा है, तो जब भी बैगा नीचे जाते थे तो उन्हें कहा जाता था कि बैदगा आ गया, अर्थात दवा देने वाला आ गया। बाद में कालांतर में प्रयत्न लाघव के नियम के अनुसार मानव की प्रति संक्षिप्त में बोलने की है तो दा वर्ण का लोप हो गया और बैदगा से बैगा बन गया। वास्तव में ये जाति औषधि उपचार और झाड़ा फूंक करने वाली एक कौम है, जो झाड़ा फूंक करती है और औषधि के द्वारा उपचार करती है। इस तरह की कृत्य करने वाले को बैगा कहा जाता था।

0: नर्मदा कहीं भी अकेली नहीं है। हिरन, बारना, कोलारमान, हथनी और सांग यदि उसके दाएं हैं, तो बर्नर, बंजर, दूधी, तवा, कंजाल और करजन जैसी 20 सहायक नदियां उसके बाएं हैं। भारत की अन्य नदियों की तरह ये पश्चिम से पूरब की ओर न बहकर पूरब से पश्चिम की ओर अरब सागर की दिशा में बहती है। 1312 किलोमीटर की यात्रा तय करती हुई जब ये भड़ौच या भृगुकच्छ क्षेत्र से होकर खंबात की खाड़ी में मिलने लगती है, तब ऐसा जान पड़ता है कि यह अमरकंटक वाली शर्मिली नर्मदा नहीं है जो अपने उद्गम पर गुलबकावली के फूलों की सहज मुस्कुराहट बिखेरती है। यहां न तो नर्मदा का मेघ शेष बसता है, न उसका चिरपरिचित उद्वेलनकारी प्रवाह। निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री राम नारायण उपाध्याय नर्मदा के नाम की व्याख्या करते हुए कहते हैं,
1: यह हमारा जो निमाड़ अंचल है, यह विंध्य और सतपुड़ा से रक्षित है और नर्मदा इसके बीच जीवन रेखा की तरह बहती है। गंगा जो है वो मैदानी इलाके से बही है, लेकिन वो ज्ञान की नदी मानी जाती है, लेकिन नर्मदा तपस्या की नदी है। इसके किनारे ऋषियों ने तप किया है। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता जो है वो यह है कि इसने चट्टानों को चीर कर अपना रास्ता बनाया, मुसीबत में से आगे बढ़ी है, संघर्ष किया है, रव किया, इसलिए इसका एक नाम रेवा है। रव जो करेगा वो रेवा होगी और जो आनंद देगी वो आनंददायी नर्म यानी आनंद दायने देने वाली। तो नर्मदा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह रेवा भी है और नर्मदा भी है।

जहाँ एक ओर नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर और महेश्वर जैसे तीर्थ नगर बसे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जबलपुर और भड़ौच जैसे औद्योगिक तीर्थ भी। नर्मदा का अंचल उन्नत खेती, मछली उद्योग और स्वादिष्ट फलों के लिए भी जाना जाता है। हमने नर्मदा के किनारे खेती करने वाले कृषक

0: मछली पकड़ने वाले मछुआरे और फलदार वृक्षों की खेती करने वाले कृषकों से बातचीत की। कृषक श्री प्रेम शंकर चौधरी।
1: मैं तो ये कहूँगा कि होशंगाबाद और आजू बाजू के जितने भी नदी से जुड़े हुए गांव हैं, वो एक बहुत बलिदान साबित है और नर्मदा का कछार तो मशहूर है हमारे देश में। तो यहाँ गेहूँ चना की खेती शुरू से ही होती आई है और अच्छी होती है और यहाँ की जमीन भी बहुत उपजाऊ है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फल भी बहुत अच्छे हुए हैं।
0: और ये है मछली पकड़ने वाले डल्लू मंसूरिया।
2: अच्छा जी, बताइए आप जो काम करते हैं मछली निकालने का
3: जी,
2: तो इससे आपके परिवार की गुजर बसर हो जाती है?
3: जी हाँ, हो जाती है।
2: अच्छा,
3: जब से हम ये यानी होश संभाला हमने, जब से हम धंधा करते चले आ रहे हैं, जब से हम देख रहे हैं अच्छी अपनी हो जाती है बसर। घर में 10-12 है ना, तो हम आराम से दो आदमी है जो शिकार करते हैं मछली का धंधा, तो उनमें पूरे 10-12 आदमी को पूरा हो जाता।
2: नर्मदा नदी के कछार में जो मछलियाँ मिलती हैं वो कौन कौन सी?
3: नर्मदा जी के कछारों में मछली मिलती है, बारस मछली मिलती है, पाढ़न मिलती, रेहू मिलती है, और एक डीगर मछली मिलती है, और यानी बहुत सी मछली है नर्मदा जी की, जितनी मछली सब मिलती।

0: नदी का वर्णन हो और नाविक की बात न हो तो ये कुछ अधूरा ही लगता है। लोगों को पार लगाने वाले नर्मदा के नाविक आज खुद मझधार में हैं।
1: आपका नाम बताइए।
2: खुशीलाल।
1: खुशीलाल जी, आप कितने सालों से नाव चला रहे हैं?
2: नाव का धंधा साहब मैंने 30 साल चला और अब छोड़ दिया। अब पेट पालन नहीं हुआ, बड़े बड़े आदमी लेने लगे ठेका, हम लोगों को टांग नहीं पूरती।
1: हाँ, तो इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
2: बेगर रोजगारी बैठे बाड़ियों का धंधा करते हैं, तो खरबूज तरबूज की बाड़ियाँ बह जाती है, हम लोगों की पानी छोड़ देते बंगाल वाले।
1: आपका नाम बताइए।
3: दयाचंद।
1: आप नाव का ही धंधा कर रहे हैं अभी?
3: और नाव का धंधा सब गया साहब, छोड़ा दिया। बड़े बड़े लंबे ठेकेदार लाखों से लेने लगे और हम छोटी परिवार के आदमी हम ठेका क्या ले सकते हैं। हमने जैसे तैसे लोगों से कर्ज लिया, तो वो कर्ज क्या लिया, तो अब वो कर्ज लिया तो लोग बाग बंधान छोड़ने लगे साहब। अब बंधान छोड़ने लगे तो उन्होंने हमें लालच दे दी सरकार ने कि हम आपको मुआवजा देंगे, तो हमने चलो आत्मा को शांति रखी। अब वो मुआवजा के विषय में कहने लगे, वो मुआवजा भी अपना कैंसिल कर दिया।
0: नर्मदा का कछार ही नहीं, यहाँ तक कि इसका पत्थर भी सैकड़ों लोगों के लिए जीवन यापन करने में सहायक है। नर्मदा का संगमरमर भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट शिल्पकार संघ के अध्यक्ष के शब्दों में,
4: नर्मदा के प्रति भाव क्या सब जीवन अर्पण है और जीवन उसी से चल रहा है, क्योंकि नर्मदा ही एक ऐसी चीज है जो यहाँ के सारे क्षेत्र को पाल रही है। क्योंकि जैसे खेती वालों को नहर पानी देती है, इस तरह शिल्पियों को नर्मदा शिल्पियों को पत्थर दे रही है।

0: मानव सभ्यता में नर्मदा की अपरिमित शक्ति के प्रति इतना विश्वास है कि वो इसकी सहायता से एक नए भारत का निर्माण करने का सपना देख रही है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बंधने वाले सैकड़ों छोटे मझोले और बड़े बांध पूरा हो जाने के बाद आसपास की बाढ़ और अकाल की चपेट में आने वाले अंचलों को खुशहाली और हरियाली से भर देंगे। किंतु नर्मदा पर बांधे जाने वाले इन भीमकाय विराट बांधों को लेकर लोगों के मन में आशंका, भय और उत्तेजना भी कुछ कम नहीं है। ये आशंका भारत के उन पर्यावरणवादियों और स्वयंसेवी संगठनों की है जिन्होंने बड़े बांधों के विरोध में जन आंदोलन छेड़ रखा है। इसी सिलसिले में हमने बाबा आमटी से बातचीत की।
1: दोस्त, हमारा आंदोलन नर्मदा के खिलाफ चल रहा है।

0: खाली ये बड़े बांधों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, ये तो चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल जिसको कहते हैं। हम कैसे बर्ताव करें, हम रहे कैसे, करप्शन कैसा हो रहा उसके खिलाफ है, वैसे इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो रिश्वत लाज ये जो कर उनके खिलाफ है। स्ट्रगल अगेंस्ट नर्मदा बिग डैम हैज बिकम अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। इसीलिए यहाँ घाटी के लोग कहते हैं कि हम जल समाधि ले लेंगे, यहाँ ड्राउन एंड डैश कोर्स खोलेंगे, लेकिन अपने जमीन को छोड़ेंगे नहीं।
1: अब इन बातों के बारे में आपके दिमाग में क्या विकल्प है?
0: छोटे छोटे बांध बनाते, उसकी व्याख्या बनती। मीडियम साइज बांध क्या होती, उसकी व्याख्या बनती। जहां नर्मदा के ऊपर बांध नहीं बांध सकते, वहां हमारे यहाँ कोयला जाता था, वहां थर्मल स्टेशन बनते। और सब जगह जैसे खरगोन जिले ने एक पैटर्न दिया है, लाखों पंप लगते हैं, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स लगती, और अनाज कम नहीं पकता, बिजली भी महंगी नहीं होती।

0: एक ओर गुजरात की जनता का पीढ़ियों से चला आया बाढ़ और सूखा, दूसरी ओर बड़ी भारी आबादी का अपनी परंपरागत जमीन से विस्थापन और पर्यावरण विनाश आसन संकट। हमारी नर्मदा भी असमंजस में पड़ गई है, किंतु नर्मदा पुत्रों का हौसला फिर भी कम नहीं हुआ है। नए भविष्य की आशा में वे मध्य प्रदेश के अपने भावती गांव से बड़ौदा के निकट गुटाल गांव में आकर नए सिरे से बसने लगे हैं। शताब्दियों से मानव सभ्यता का ये क्रम यहाँ नए संकल्प के साथ अब भी जारी है।
1: मेरा नाम है बिहारी लाल, खरगोन जिला, तहसील बड़वानी, ग्राम भौती।
2: ग्राम भौती, हाँ। तो यहाँ आकर कितने दिन हुए आपको?
1: यहाँ करीब हो गए हमको, मतलब 4 महीने।
2: वहाँ पर ग्राम भौती में आपके पास कितनी जमीन थी?
1: मेरे पास वहाँ पर कुछ जमीन नहीं थी।
2: अब आपके साथ यहाँ पर कौन कौन आया है परिवार में?
1: मेरे 2 लड़के और 1 मैं, 3 है मतलब।
2: आपके रहने की क्या व्यवस्था है
1: यहाँ पर? रहने के लिए मतलब अभी टीन सेट बना के दिए हैं, मतलब तो टीन सेट में रह रहे हैं अभी।
2: अच्छा, खेती के लिए जमीन वगैरह?
1: हाँ, खेती के लिए जमीन 5 एकड़ जमीन मतलब प्रति एक आदमी को दी गई है। मतलब तो मेरे घर में जैसे 3 सदस्य हैं, तो मेरे को 15 एकड़ जमीन, मेरे 2 बच्चों और 1 मैं, ऐसे मिला के 15 एकड़ जमीन मिली है। उसके अलावा और हमें मतलब 5,000 रुपये बैल जोड़ी के लिए अनुदान दिया है, और 375 रुपये आपने को मतलब निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है।
2: काका, आपका नाम बताइए।
3: मेरा नाम शुभ नाम केवल सिंह वास्कल है।
2: कितनी एकड़ जमीन आपके वहाँ पर थी?
3: 5 एकड़ 80 डिसमल।
2: अच्छा, तो वो जो खेती संभाल रहे हैं वो डूब में नहीं आ रही क्या?
3: डूब में तो आएगी, पर अभी नहीं आए नहीं।
2: अच्छा, कितने एकड़ यहाँ जमीन आपको मिली?
3: 15 एकड़।
4: मेरा नाम नादेशम सोलंकी, 5 भाई और 1 पिताजी, कुल मिला के 6 जना है।
2: वहाँ पर आपके पास कितनी जमीन थी?
4: सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी।
2: वो किसके नाम पर थी?
4: पिताजी के नाम पर।
2: अब यहाँ पर आपको कितनी जमीन मिली हुई है?
4: यहाँ पर 30 एकड़।

0: गुजरात में बनाए जा रहे सरदार सरोवर ने जहां पर्यावरणवादियों और डूबने आने वाले लोगों के मन में एक भय पैदा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर गुजरात राज्य के लोगों को सरदार सरोवर में उज्जवल भविष्य की किरणें दिखाई देने लगी हैं। गुजरात राज्य के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर सी सी पटेल,
1: गुजरात पिछले कई सालों से बाढ़ और अकाल से त्रस्त प्रदेश रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो आदमी और पशुओं के पीने के पानी की है। कहीं कहीं पानी का स्तर 30 मीटर नीचे चला गया तो कहीं कहीं 200-300 मीटर

स्तर नीचे जा चुका है। सन 1985-86 में तो 16 लाख पशु चारा और पानी की तलाश में 400 किलोमीटर तक भटकते रहे। जहां ऐसी दशा हो वहां की जनता अगर नर्मदा के पानी को अमृत की तरह पाना चाहे तो क्या आश्चर्य है। सरदार सरोवर पूरे गुजरात के लिए नए जीवन और नए युग की शुरुआत है। जब की बांध

0: हो जाएंगे। सरदार सरोवर भले ही गुजरात की धरती पर बन रहा हो, पर इसका लाभ राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को भी मिलने वाला है।
1: आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं?
0: सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा विस्थापितों का है। इस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पुनर्वास योजना दुनिया में अद्वितीय है। जिसके पास जमीन नहीं है उसे भी 5 एकड़, और जिसके पास जमीन है उसे भी हम कम से कम 5 एकड़ दे रहे हैं। अगर किसी संयुक्त परिवार में 5 वयस्क जवान बेटे हैं तो प्रत्येक को 5 एकड़ और खेती लायक जमीन देंगे।
2: ये बात सही है कि जब जब भी विकास की बात हुई कुछ विरोधाभास उभरे हैं, कहीं प्राकृतिक रूप में तो कहीं मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर। जहां एक ओर गुजरात पूरे संकल्प के साथ सरदार सरोवर बनाने में कृत संकल्प है, वहीं मध्य प्रदेश भी इंदिरा सागर बनाने की दृढ़ प्रतिज्ञा किए हुए है। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास मंत्री श्री शीतला सहाय।
3: मध्य प्रदेश जुलाई 1990 तक 2 मत में था, बने या ना बने। यद्यपि ना बने ऐसी कोई गुंजाइश अब है नहीं। समूचा प्रचंड देखा, अध्ययन किया तो हम इस निर्णय पर पहुंचे कि नर्मदा सागर, जिसे इंदिरा सागर भी कहते हैं, बनाने की सिवाय और कोई हमारे पास चारा नहीं। इस बार बजट प्रोविजन भी हमने 180 करोड़ का किया है, 20 करोड़ और उसको मिल जाएंगे, इस तरह से 200 करोड़ के करीब खर्च होगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 1000 करोड़ रुपए रखे हैं, कब तक लगभग ये पूरा हो जाएगा? अब 9वीं पंचवर्षीय योजना तक तो जाएगा।
4: नर्मदा सरोवर के बारे में जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
3: जब जब भी विकास के काम हुए हैं उस समय कहीं ना कहीं से कोई ना कोई विरोध आया है। भाखड़ा नांगल बना हो या इंदिरा नहर बनी हो, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई विरोध था। और इसलिए इन पर्यावरणवादियों से मेरा निवेदन है कि वो अपने स्टैंड पर एक बार फिर से विचार करें।
2: पिछले 30-40 वर्षों से भारत की विकास नीति का ही एक हिस्सा है नर्मदा घाटी विकास, जिसके अनुसार पूरे अंचल में नहरों का जाल सा बिछ जाएगा, बिजली पानी की सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी, हमारे किसान ना तो बाढ़ की चपेट में आएंगे, ना सूखा और अकाल की मार खा खा कर आजीविका की तलाश में दर दर भटकेंगे। नर्मदा और उसकी सहायक नदियां अपने छोटे बड़े बांधों के गहने पहनकर लहलहाते सिवानों में बदल जाएंगी और शत शत कंठों से फूट पड़ेगा ये गीत।

fuori papà!

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

मझधार में आने आधी उठत प्रचंड आधी उठता

शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि देवी गंगा शिव पुत्र उत्पत्ति के बीज के तेज और ताप से विचलित हो उठी थी। नारद मुनि के परामर्श से उन्होंने ये बीज अपने ही जल में प्रवाहित कर दिया। बीज सरकंडे के खेत में जा उलझा। उससे छह मुख वाला एक अति दिव्य शिव पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रकृति की कलाओं और कृतिकाओं के आग्रह पर देवी पार्वती और देवाधिदेव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को कुछ वर्षों के लिए उन्हें सौंप दिया। कार्तिकेय जन्म से तारकासुर भयभीत हो उठा। दैत्य साम्राज्य बचाए रखने के लिए दैत्य माता दिति ने सेना का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। असुरों के पुनः बढ़ते अत्याचारों के कारण प्रभु शिव शंकर ने पुत्र कार्तिकेय को वापिस बुलाने का निर्णय लिया। प्रस्तुत है इससे आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूत जी, देवाधिदेव के इस आकस्मिक निर्णय से कृतिकाएं तो बहुत दुखी हुई होंगी।
2: विप्रवर शौनक जी,
1: तीव्रता से परिवर्तित होते घटना चक्र से अनभिज्ञ कृतिकाएं तो बालक कार्तिकेय पर अपना संपूर्ण मातृत्व न्यौछावर करने में व्यस्त थी। उन्होंने कुमार कार्तिकेय को ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, यहां तक कि युद्ध कला सिखाकर महादेव के ही कथन की सत्यता प्रमाणित की थी।

0: महादेव के कथन की सत्यता? आप किस कथन के विषय में कह रहे हैं सूत जी?
1: स्मरण करें शौनक जी, जब महादेवी पार्वती ने कुमार को कृतिकाओं को सौंपे जाने पर आपत्ति प्रकट की थी, तब स्वयं महादेव ने कृतिकाओं के कौशल की सराहना की थी। महादेवी को समझाया था कि वे कुमार का उत्तम लालन पालन करने में सक्षम हैं।
0: हे महाभाग, प्रकृति की सक्षमता पर कौन प्रश्न चिन्ह लगा सकता है? फिर क्या हुआ? मुनि नारद और नंदी के आगमन पर कृतिकाओं की क्या प्रतिक्रिया हुई?
1: शौनक जी, अचानक इतने विशाल दलबल की उपस्थिति से पहले तो कृतिकाएं भयभीत हो उठीं, परंतु तुरंत ही भय का स्थान क्रोध ने ले लिया।
2: क्या देवाधिदेव को हमारे वचन पर विश्वास नहीं था जो उन्होंने बलपूर्वक कुमार को हमसे छीनने के लिए आपको भेजा है?
3: बल? कैसा बल देवी कृतिका?
2: आयुधों से लैस ये रथ, अस्त्रों से सुसज्जित ये सहस्त्रों शिवगण।
4: नारायण नारायण। कृतिकाओं, लगता है आप महाप्रभु के स्वभाव से अपरिचित हैं। अकारण बल प्रयोग में उनका बिल्कुल विश्वास नहीं है, और वो भी स्त्रियों के विरुद्ध। नारायण नारायण, वो तो कदापि नहीं।
2: तो फिर यह विशाल सैन्य बल किस लिए?
3: देवी, ये सहस्त्रों शिवगण अपने कुमार का स्वागत करने आए हैं। शस्त्र इसलिए साथ लाए हैं कि कहीं मार्ग में असुरों से भेंट ना हो जाए।
2: परंतु अचानक देवाधिदेव को कुमार कार्तिकेय की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? वे यहाँ अति प्रसन्न हैं।
4: हम जानते हैं कृतिकेय, कुमार यहाँ प्रसन्न ही नहीं आनंद से भी हैं। यदि वो आप ही के पास रहते तो देवी पार्वती और महादेव को कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु लोक कल्याण हेतु उनका लौटना आवश्यक हो गया है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका जन्म हुआ है देवी, उसे पूरा करने का समय आ गया है।
3: और यही शिवाज्ञा है।
5: माताओं, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य होता है।
2: पुत्र कार्तिकेय, क्या पिता की आज्ञा के समक्ष माता की ममता, उसका स्नेह कोई महत्व नहीं रखती?
5: माते, आप ही की शिक्षा है कि हर वस्तु का अपना महत्व अवश्य होता है, परंतु ये समय की मांग पर निर्भर होता है कि कब कौन सी वस्तु अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। इस समय लोक कल्याण के लिए पिता की आज्ञा ही सर्वोपरि है।
4: नारायण नारायण। तितिकाओ, धन्य है आप, आपसे ऐसी ही शिक्षा की अपेक्षा थी। आपको तो अपने इस दत्तक पुत्र पर गर्व होना चाहिए।
2: हम सब जानती थीं कि तुम हमारे पास महाप्रभु की धरोहर हो और उनका हम पर महा उपकार है। इस धरोहर को उनके मांगे जाने पर लौटाने के लिए हम वचनबद्ध भी हैं। जाओ पुत्र कार्तिकेय, पिता के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करो, किंतु हमें भी स्मरण रखना पुत्र।
5: माते, आपने हमें पाला पोसा है, और पालन करने वाली माता का स्थान जन्म देने वाली माता से भी उच्च होता है। आपका स्मरण हम हर पल करते रहेंगे। हमें आशीर्वाद दें, जिस कार्य हेतु हम जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले।
2: विजयी भव पुत्र कार्तिकेय, आयुष्मान भव।
6: कुमार कार्तिकेय की जय। देवी कृतिकाओं की जय। शिव पुत्र की जय।
7: दैत्य माता दिति की जय।
2: दैत्य सेनापति, इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हो? क्या समाचार लाए हो?
7: नारद और नंदी शिवपुत्र कार्तिकेय के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। ब्रह्मा और विष्णु समेत सभी देवता भी वहाँ एकत्र हो चुके हैं।
2: तो इसमें चिंता की क्या बात है? तारकासुर को वरदान है कि वह शिवपुत्र के अतिरिक्त किसी अन्य के हाथों नहीं मारा जा सकता, और शिवपुत्र अभी बहुत छोटा है।
8: एक छोटी सी चींटी ही विशाल गजराज के मृत्यु का कारण बन जाती है दैत्य माता।
2: दैत्य

0: गुरु शुक्राचार्य, हम बहुत समय से देख रहे हैं कि दैत्यों के प्रति आपके व्यवहार में परिवर्तन आता जा रहा है। आप उनका हित सोचने के स्थान पर उनसे विमुख होते जा रहे हैं।
1: यदि मैं अपने शिष्यों से विमुख हो गया होता तो उनकी प्राण रक्षा के उपाय ना सोच रहा होता। विशेष रूप से अपने प्रिय शिष्य तारकासुर की प्राण रक्षा का उपाय।
0: तो क्या उपाय सोचा आपने?
1: क्षमा, क्षमा ही एकमात्र उपाय बचा है।
0: क्षमा? मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी दैत्य गुरु।
1: शिव से क्षमा मांगने पर ही तारकासुर की प्राण रक्षा संभव हो सकती है।
0: दैत्यों के विरोधी देवता दैत्यों को ही क्यों क्षमा करेंगे?
1: दैत्य माता, देवता कभी अपने गणों में भेदभाव नहीं रखते। सुर असुर, मानव चर अचर, सब उनके गण हैं। और फिर शिव की तो गोत्र ही क्षमा है। मुझे स्मरण है शिव पार्वती विवाह का वो प्रसंग, जब स्वयं ब्रह्मा ने उन गोत्रहीन को गोत्र प्रदान की थी।
2: ये क्या सर, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं?
3: क्षमा,
2: क्षमा, गोत्र,
3: ब्रह्मा जी के गोत्र,
2: ये कैसे हो सकता है?
1: दैत्य माता दिति, इसके पश्चात उन्होंने क्रोध में आकर भस्म किए गए कामदेव को भी क्षमा करते हुए उन्हें पुनः जीवित कर दिया।
0: एक देवता ने दूसरे देवता पर उपकार किया, परंतु दैत्यों से देवता घृणा करते हैं और हम दैत्य देवताओं से घृणा करते हैं। वे पग पग पर हमारे अपराधी हैं। दैत्य साम्राज्य में क्षमा नाम का शब्द नहीं होता शुक्राचार्य। हम मात्र दंड देते हैं अपने विरुद्ध किए गए कुकर्मों और अपराधों का। देवताओं ने हमारे विरुद्ध अपराध ही अपराध किए हैं। वे हमारे दंड के भागी थे, हैं और रहेंगे।
1: और दैत्यों के अपराधों का दंड उन्हें कौन देगा?
0: कैसे अपराध, कौन से अपराध?
1: साम्राज्य विस्तार के लिए निरीह निरापराध प्राणियों की हत्याएं, नारियों का बलात्कार, शिशुओं का हृदय भेदन।
0: साम्राज्य विस्तार की शिक्षा आप ही ने हमें दी है शुक्राचार्य।
1: परंतु निरीह जीवों को सताने की शिक्षा कभी नहीं दी। उच्च कोटि के ब्राह्मण होने के पश्चात भी हम दैत्यों के गुरु बने। हमारा समान अधिकार में विश्वास था, इसीलिए हम दैत्यों को भी उनके अधिकार दिलाना चाहते थे। परंतु दैत्यों ने अहंकार में आकर उस अधिकार का दुरुपयोग किया है, हमारी शिक्षा का अपमान किया है।
0: दैत्यों की निंदा करके तुम हमारा अपमान कर रहे हो शुक्राचार्य। जाओ, हम तुम्हें दैत्य गुरु के पद से हटाते हैं। हमारे सम्मान में तो स्वयं शिव भी शीघ्र अपना पद त्यागने वाले हैं। ऐसे में आपका मूल्य ही क्या है?
1: अरे मूढ़ मते दिति, तू दैत्य वंश का नाश करने पर तुली है। तेरे नेत्रों पर अहंकार और दंभ की पट्टिका बनी हुई है। तू सृष्टि रचयिता का स्थान लेने का स्वप्न देख रही है? देख, अवश्य देख, परंतु सृष्टि रचयिता और पालक की संहार शक्ति भी देख। हम जा रहे हैं।
0: जाइए दैत्य गुरु, जाइए। तारकासुर।
4: श्री दैत्य माता,
0: विगत में देवताओं की श्रेष्ठता के बारे में फैले इस भ्रम को तुम अपने बाहुबल से तोड़ चुके हो। अब देवताओं के भी देवता उस शिव के प्रति फैले भ्रम को समाप्त करने का समय आ गया है।
4: परंतु दैत्य माता,
0: क्या हिरण्यकशिपु का वंशज वज्रांग पुत्र तारकासुर एक छोटे से बालक से भयभीत हो उठा है?
4: नहीं दैत्य माता, नहीं। हम
0: या देवताओं को सदा परास्त करने वाला तारकासुर युद्ध कला भूल गया है?
4: दैत्य माता,
0: तो निश्चय ही अपनी माँ के दुग्ध के स्थान पर तुमने जल का पान किया होगा।
4: दैत्य माता, हमारी माता के दुग्ध का अपमान ना करें।
0: अपमान हम नहीं, तुम

0: रहे हो तारकासुर, एक दैत्य माता के दुग्ध का मूल्य चुकाने के अवसर पर तुम पीछे हट रहे हो।
1: बस बस, और कुछ ना कहिए, और कुछ ना कहिए। अपने प्राणों पर खेल कर भी ये तारकासुर अपनी माँ के दुख को अपमानित नहीं होने देगा। दैत्य सेनापति
2: आज्ञा सुरराज,
1: समस्त दैत्य सेना को आदेश दो वो वही सागर संगम पर एकत्र हो। कार्तिकेय को हम वही युद्ध के लिए ललकारेंगे।
2: जैसी आज्ञा दैत्यराज।
1: दैत्य माता आशीर्वाद दे कि हम शिव पुत्र के छहों शीश आपके चरणों में अर्पित कर दे। दैत्य माता आपके चरणों में अर्पित कर दे।
0: ऐसा ही होना चाहिए तारकासुर।
1: सेनापति प्रस्थान।
3: दैत्यराज तारकासुर की जय।
4: दैत्य माता दिति की
3: जय।
4: दैत्य माता दिति की
3: जय। त्रिलोकी स्वामी तारकासुर की
4: जय।
3: त्रिलोकी स्वामी तारकासुर की
4: जय। शिव पुत्र कार्तिकेय की
3: जय हो।
4: शिव पुत्र कार्तिकेय की
3: जय हो।
4: शिव पुत्र कार्तिकेय की
3: जय हो।
5: महादेव महादेवी की
3: जय हो।
5: महादेव महादेवी की
3: जय हो।
5: महादेव महादेवी की
3: जय हो।
6: विष्णु हरि, शिव पुत्र के दर्शन कर मन आनंद से भर उठा है। देखिए ना, रथ पर आरूढ़ षडानंद कार्तिकेय कैसी अद्भुत किरणों से प्रकाशमान हो रहे हैं।
7: हाँ विधात, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वयं भगवान शिव इस बालक में अवतरित हुए हों।
6: उधर माता पार्वती और महाप्रभु के मुखमंडल पर भी तो पुत्र मिलन के इस अवसर पर स्नेह का प्रकाश चमक उठा है।
7: अरे देखिए विधात, रथ से उतरकर कुमार कार्तिकेय इसी ओर आ रहे हैं।
8: प्रणाम पिताजी। प्रणाम माते।
9: चिरंजीवी भव पुत्र कार्तिकेय।
8: प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम श्री विष्णु हरि।
9: आयुष्मान भव।
8: पिताजी, मार्ग में भ्राता नंदी कह रहे थे कि आपने किसी विशेष लोक कल्याण कार्य के लिए हमें स्मरण किया है। आज्ञा दे पिताजी, हमें क्या करना होगा?
9: पुत्र कार्तिकेय, तुम्हें सहस्रों वर्षों से चले आ रहे तारकासुर के अत्याचारों का अंत करना है, उसका वध करना है। जाओ, देवताओं और शिवगणों की सेना का नेतृत्व करो और विधि के इस विधान को पूरा करो।
10: परंतु हे नाथ, पुत्र कार्तिकेय का अभी तो आगमन हुआ है, आप तुरंत ही उन्हें रणभूमि में भेज रहे हैं, थोड़ा विश्राम तो करने दें।
9: देवी पार्वती, विश्राम का एक एक पल तारकासुर के बल को प्रोत्साहित करेगा।
10: स्वामी, ये भी तो देखें, कुमार अभी कितने छोटे हैं, उस अति बलशाली राक्षस का सामना कैसे कर पाएंगे?
6: देवी पार्वती, पुत्र गणेश तो आपके शरीर के मैल से उत्पन्न हुए थे और नवजात थे, फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था। स्वयं देवाधिदेव ही उन्हें पराजित कर पाए थे।
7: फिर देवी, कार्तिकेय तो स्वयं शिव पुत्र हैं और बड़े भी हो चुके हैं, उनके बल पराक्रम पर तो किसी को भी संदेह तक नहीं होना चाहिए।
9: और पार्वती, हमने समय को ही दृष्टि में रखते हुए कुमार को यहां बुलवाया है। देवताओं, कुमार कार्तिकेय को दिव्य अस्त्र भेंट कीजिए और पुत्र, मैं तुम्हें अपना शूल, पिनाक और फरसा प्रदान करता हूँ।
6: ब्रह्मा का यज्ञोपवीत धारण करो पुत्र कार्तिकेय।
7: पुत्र कार्तिकेय, मैं विष्णु तुम्हें किरीट और सुदर्शन चक्र भेंट करता हूँ।
11: कुमार, इंद्र की ओर से ये एरावत हाथी और वज्र स्वीकार करें।
10: पुत्र कार्तिकेय, अपनी माता से तुम शक्ति को ग्रहण करो।
9: हे देवताओं, कुमार के नेतृत्व में अभीष्ट प्राप्ति की ओर अग्रसर होइए।

0: नंदिकेश्वर, वीरभद्र,
1: आज्ञा स्वामी।
0: कुमार कार्तिकेय को हमने आपके संरक्षण में दिया।
1: हम धन्य हुए देवादिदेव।
2: हे माते पार्वती, हे पिताजी, हमें आशीर्वाद दे कि तारकासुर का शीश हम आपके चरणों में लाकर अर्पित कर सके।
0: विजय भव पुत्र,
3: आयुष्मान भव पुत्र,
2: प्रस्थान हो।
4: प्रस्थान।
5: कुमार कार्तिकेय की
4: जय।
5: शिवनंदन कार्तिकेय की
4: जय।
5: तारकासुर संहारक कुमार कार्तिकेय की
4: जय।
6: अपने प्राण बचा तारकासुर, हम आ रहे हैं।
5: अरे अत्याचारी तारकासुर, तेरा अंत आ गया है।

0: दैत्यराज तारकासुर, वो देखिए उस दिव्य रथ पर बैठा छह मुखी बालक ही कार्तिकेय है।
1: क्या
2: वो है कार्तिकेय? अरे ये बालक तो हमारे पग की धूली के बराबर भी नहीं है, ये हमें क्या मारेगा? हम व्यर्थ ही भयभीत हो उठे थे। अरे ब्रह्मा, अरे विष्णु, ये किस छह अंगुल के छह मुखदारी बालक को लेकर हमारे वध की इच्छा से यहाँ आए हो? ये तो हमारी मुष्टि का एक प्रहार भी सहन नहीं कर पाएगा।
3: अरे अहंकारी तारकासुर, क्या तू देख नहीं रहा? तेरे समक्ष तेरा ही मांगा वरदान खड़ा है। यही वह शिव पुत्र है जिसके हाथों तूने अपनी मृत्यु मांगी थी। तेरी वही हार्दिक इच्छा पूर्ण करने के लिए कुमार कार्तिकेय तेरे साक्ष है।
2: ये हमें क्या हानि पहुंचाएगा? मैं अकेला ही इससे युद्ध करूंगा। मैं ही समस्त वीरों, प्रथम गणों, लोकपालों तथा विष्णु जिनके नायक हैं, उन सभी देवों को मार डालूंगा।
4: आक्रमण!
5: अरे स्वामी कार्तिकेय, मुझ सेवक वीरभद्र के होते हुए आप युद्ध करें, ये मुझे शोभा नहीं देता। मैं अभी तारक को मारता हूँ।
4: आक्रमण!
3: श्रीहरि, वीरभद्र ने त्रिशूल से तारकासुर को धराशायी कर दिया है।
6: परंतु ये क्या, क्षण भर मूर्छित रहने के पश्चात वो पुनः उठ खड़ा हुआ है? अरे ये तो रोम हर्षक युद्ध हो रहा है।
3: हाँ, मानो बुध और मंगल युद्ध कर रहे हैं। अरे तारकासुर ने अपने सिर देव सेना पर छोड़ दिए हैं। देवता आहत होकर इधर उधर भाग रहे हैं।
6: ठहर तारकासुर, मैं आया।
3: विष्णु हरे, ये आप
4: आत्मा
2: स्वयं लक्ष्मीपति विष्णु युद्ध भूमि में उतर आए हैं। स्वागत है। वर्षों से आपको युद्ध का अभ्यास ना हुआ होगा, आइए कुछ युद्धाभ्यास करा दूं। मेरा तो एक पद घात ही आपको युद्ध भूमि छोड़ने पर विवश कर देगा।
6: अरे ये क्या, सूर्यदेव, श्री विष्णु ने अपनी गदा उठा ली है,
7: परंतु तारकासुर ने

0: विभीषक बाण मारकर उसके दो भाग कर दिए हैं इंद्रदेव।
1: अरे अब भगवान ने शारंग धनुष उठा लिया है। ओह, तारकासुर ने भी भगवान पर बाणों की वर्षा कर दी है।
0: अरे ये क्या, श्री हरि मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े हैं।
1: परमपिता, परमपिता कुछ कीजिए, अन्यथा हमारी पराजय निश्चित है।
0: हाँ
2: पुत्र कार्तिकेय।
3: आज्ञा ब्रह्मदेव।
2: मेरे वरदान के कारण तारकासुर सभी के हाथों अभेद्य है, उस पर मात्र तुम ही विजय पा सकते हो। जाओ पुत्र, तारकासुर के आतंक का अंत कर दो।
3: आपकी आज्ञा शिरोधार्य है परमपिता।
1: अरे ये क्या, कुमार कार्तिकेय रथ से उतरकर पैदल ही तारकासुर की ओर बढ़ रहे हैं।
0: एक परम कांतिमान उल्का की भांति उन्होंने अपनी शक्ति को उठा लिया है। दैत्यराज, दैत्यराज कार्तिकेय इस ओर आ रहा है।
4: अरे मूढ़ देवताओं, ये किस बालक को तुमने मुझसे युद्ध करने को प्रेरित किया है? तुम्हें लज्जा नहीं आती? स्वयं तो सहस्रों वर्षों से मुझे पराजित कर नहीं सके, अब एक निरीह बालक को अपना अस्त्र बनाया है। जा, हे अबोध बालक, इन देवताओं के छल में ना अपने प्राण बचा, मैं तुझे नहीं मारूंगा।
3: परंतु पिता की आज्ञा से मैं तुझे अवश्य मारूंगा।
5: आज तेरे आतंक का और तेरा अंत आ गया है। इस युद्ध में कुमार कार्तिकेय की विजय सुनिश्चित है। एक बार फिर अपने कर्मों को कर्मों का स्मरण कर ले और शिव पुत्र के हाथों नरक गामी हो। शिव पुत्र के हाथों नरक गामी हो, नरक गामी हो, नरक गामी हो।

0: स्वर्ग के स्वामी को कौन नरकगामी बना सकता है? अरे मति भ्रष्ट बालक, ले बच, तार का सुर के प्रहार से बच।
1: अरे दुष्ट तार का सुर, ले अपना अंत।
2: देखिए कुमार कार्तिकेय ने शक्ति द्वारा तार का सुर का वध कर दिया। अरे
3: पाही पाही, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पाही पाही, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
2: अरे कितने ही असुर प्राण रक्षा के लिए कुमार के चरणों में लौट रहे हैं और सहस्त्रों पाताल में घुसे जा रहे हैं। अरे ये क्या, कुमार परम पिता ब्रह्मा और श्री विष्णु के समक्ष नतमस्तक हो रहे हैं।
4: परम पिता श्री विष्णु, माता पिता और आप सबके आशीर्वाद से मैंने अपना नियत कार्य संपन्न किया।
5: पुत्र कार्तिकेय।
4: पिताजी आप?
5: पुत्र, तुम्हारी विजय का समाचार सुनकर हम तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा न कर सके। कार्तिकेय, माता पिता का आशीर्वाद तो सदा अपनी संतान के साथ रहता है। ये संतान का कर्म है जो उस आशीर्वाद को फलीभूत करता है। कर्म की अनुपस्थिति में आशीर्वाद का कोई महत्व नहीं होता।
6: प्रभु शिव शंकर की
7: जय,
6: माता पार्वती की
7: जय,
6: कुमार कार्तिकेय की
7: जय।
8: और परम ज्ञानी शौनक जी, इस प्रकार सहस्रों काल से चले आ रहे दैत्य आतंक का कुछ समय के लिए अंत हो गया।
9: कुछ समय के लिए अंत हो गया? मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा महाभाग सूत जी।
8: शौनक जी, अच्छे बुरे सत्य असत्य के बीच संघर्ष तो एक चिरंतन प्रक्रिया होती है। ये तो समय समय की बात है कि कब कौन कितने काल के लिए दूसरे पर

0: हावी हो जाता है, तो क्या तारकासुर के पश्चात और भी बलशाली राक्षस उत्पन्न हुए?
1: हाँ,
0: तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष उत्पन्न तो हो चुके थे, परंतु उनके आतंक का आरंभ होने में अभी समय था। तो इस बीच क्या हुआ सूत जी, वो बताइए।
1: ये बताने में भी थोड़ा समय है, इस प्रसंग को अगली भेंट में आगे बढ़ाएंगे।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचाकर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

नव दुर्गा दुर्गा शक्ति नी आराधना नो आजे बीजो दिवस अने ए नव दुर्गा मा बीजा जे दुर्गा ए ब्रह्मचारिणी कहवाय छे। એમનું ધ્યાન આ પ્રકારે છે।

रामावलिम् इमां यस्तु दुर्गाया मम मानवाः पठे सर्वभयान् मुक्तः भविष्यति न संशयः। अर्थात कठिन के दुष्प्राप्य ज्ञानना स्वरूपे रहेला दुर्गम ध्यान थी प्रकाशित थनारा जमनी माया मोह अकड़े ए दुर्गम मार्ग में रहेला दुष्प्राप्य अर्थना स्वरूप वाला दुर्गा देवी ने हमें प्रणाम करीश। तोज साथे दुर्गम दैत्यना संहारक विकट आयुधन धारण करनारा अविचिन्त्य अंगो वाला दुर्गम मार्गे गति करनारा होवाथी दुर्गम्य मुश्किली थी प्राप्त थनारा कम नसीब वाला मानसोना रक्षक स्वामिनी दुर्गा देवी खरेखर परमेश्वरी ये माता दुर्गम्य छे दुष्टो माटे भयंकर छे तमनो क्रोध भयानक होय छे दुष्प्राप्य मुश्किलियों ने टाळनारा दुर्गा माता वंदन करीश। जे मनुष्य दुर्गाना आ नामों पाठ करे छे ते बेशक बधाज प्रकारना भयमांथी मुक्त थाय छे।

0: ಕಾಗದ ಕಾಗದ ಬರುವಾಯೋ.
1: ಅಂತರ ಚೀರು ಕಾಗದ.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।